श्रोता मित्रों, आप समरिया गुजराती कार्यक्रम गीत माला 102.8 FM पर या तो www.diversefm.com पर गीत माला कार्यक्रम दर गुरुवारे आपने समझ रजूआत करवाने पूरी कोशिश करी है। रात ना 8-10 कलाके लाइव 102.8 FM पर लूटन डंस डबल आउट एंड रिजिस लाइटन बजट एल्सबरी मिल्टन किंग्स हॉलिडेव मिल्टन किंग्स न्यूपोर्ट पेगनल अने नॉर्थम्पटन ना टोचमा ने आ बाजू फरी पाछा आवे तो बेडफोर्ड विलिंगटन सिटी हिचिन स्टीवनेज हेटफील्ड नेबवत अने अनेक विस्तारों में पण आपने आप सांभळी सको छो। या तो पछी दुनियाना कोई पण खूणा में होय तो www.diversefm.com पर तमे सांभळो अने बीजाने सांभळावो। स्टूडियोनो व्हाट्सएप नंबर छे 0756868683। हेपी नवरात्रि आप सौने। अने हाँ, नोरतानी रमझट चाली रही है, बधाए आप सौ खूब ज आनंद मानता हशो तेवी आशा छे। आप सांभळी आछो गीतमाला 102.8 FM ઉપર યા તો www.diversefm.com ઉપર માણી આજે ખૂબ આનંદથી આ કાર્યક્રમ નોરતાને અને માતાજીના ગરબા।

श्रोता मित्रों, आप सुन रहे हैं चौक जाती कार्यक्रम गीत माला 102.8 FM पर या तो www.divasfm.com पर। गीत माला कार्यक्रम दर गुरुवार आपने

श्रोता मित्रों, आप सुन रहे हैं गुजराती कार्यक्रम गीतमाला 102.8 एफएम पर या तो www.divasfm.com पर। गीतमाला कार्यक्रम दर गुरुवारे आपनी समक्ष रजूआत करवाने पूरी कोशिश करे छे। रातना 8 થી 10 કલાકે તમે સાંભળો અને બીજાને સંભળાવો ગીતમાળા।

श्रोता मित्रों, आप समरियाचोको जाते कार्यक्रम गीतमाला 102.8 FM उपर या तो www.divasfm.com उपर गीतमाला कार्यक्रम दर गुरुवारे आपने समझ रजूआत करवाने पूरी कोशिश करे छे। रातना 8-10 कलाके तमे संभळो अने बीजाने संभळावो। दुनियाना कोई पण खूणामां सांभळता होय आपनुं स्वागत छे। आवी ज रीते आप नवरात्रिनो आज खास कार्यक्रम एक प्रस्तुत करवानी पूरी कोशिश करी छे। હવે એક પછી એક બધે સમય પણ જતો જાય છે, પણ છેલ્લી ફરમાઈશ આવેલી છે ચેક પોર્ચુગલ લિસ્બનથી પપ્પુભાઈ આપના માટે અને સૌ શ્રોતા મિત્રો માટે।

श्रोता मित्रों, आप सुन रहे हैं तो गुजरात से कार्यक्रम गीत माला ने खास करी ने आज नो कार्यक्रम आपने समस्या प्रस्तुत करू है माताजी ना गरबा अने खूब ज आनंद आयो। अभी ज रीते आता गुरुवार फरी पाचा आपनी सेवा में जते जासू त्या सुधी शुभरात्रि कहवाई रही आज बाय बाय। हैप्पी नवरात्रि अने शुभ शांति अने सुख शांति आपने प्रदान थाय एवी अमारी बधाईनी प्रार्थना छे। गीतमाला कार्यक्रम दर गुरुवारे आपनी समक्ष रजूआत करवानी पूरी कोशिश करे छे। रातना 8-10 कलाके 102.8 FM उपर या तो www.divasfm.com उपर तमे सांभळो अने बीजाने संभळावो। આવતા ગુરુવાર સુધી શુભરાત્રી કહે રહ્યા જો, બાય બાય, એમ કેમ રહેજો અને સાવધાન રહેજો, સ્કેમર્સથી દૂર રહેજો।